0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमा यार सौदा सौदा
3: ओहो
4: दोनों डील कर
1: टाइट टाइट वेरी टाइट।

निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
2: मुदी के मेघट्स दिवेफ मेगडे कुरे मेगेंदा नी लंच ब्रेक मेतु के लंच ब्रेक तेज हम हमें कुरे गेंदा यार मेदु टी टाइम रिक्वेस्ट शो या मैसेज कोल लागे लव जहालम के फुर्सत ओन्नान मिहार फिश का मैसेज कुरम वी और मेंग ए लव त जहाल द मुंदाना शो के तेरे दे वर बेवर मैसेज मिहार से मटी टाइम ऑफ स्लीप मुंदानी हे वी वी हैव स्किन लव त के जहाल दिन मसे के कुराना मिगडी अमें मिहार कुरिया मिगेंदा लंच ब्रेक मे शोगा अंड कस इतुर टिपे क्याल दे मेळेनी हेदुं एळुमुगा काळु हुदु क्रीम आदि नेवी ब्लू फद न्यूट्रिय कुलत बेनु कुर्मकी अबदु ताजा आदि क्लासिक लुके लिबे कांकम मिफद कुलत कुगे हेदुं तं एक गो एक तं एक को गें अलुं बेनु कुरम वार फसेवान बुना मिक्स एंड मैच एमुड़ मेगेन मेघे सब उंगिने हेदुन तक नुगण मधु हेदुन कोलकुंगेन स्टाइल तक उफे तुमगे फुर्सत लिबे फैसा सलामे बाण नमस मा गादा कुल तक लोभ को रामी हुन नमे कुल त मा आदा के फूही कुल तक गुद का सिफवाण आदि हुदुन वत क्रीम कुल आगे हेदुन तक कुणी जे कुल मिलवम के फुर्सत वर बडवाण एहे नमस कोम में मुनासिबत का आवेस गुळे गोता तैयार वेलम न्यूट्रियल कुल तक की एमे इतुबार कोरेवे हियार कुरु मी अबदस फैशन के तेरे ताजा को हुनाने कुलता लुई नालगोत कंग हेदुंगळम बेनुवा मी हुना मी एम में रंगळ कोई

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

सात समुंदर पार की बॉलीवुड के तारीख गाओ फेदुनु एमे मशहूर आदि मियादा हमें विस एमे मकबूल एल लवा नवारस्ते का नवदिह देवन आहरु नेरुनु एक्शन त्रिला फिल्म विश्वात्मा कहिमिने मिलावे की नेरु मायकु बड़ मकबूल कमें होदा मियादविस इंडिया के पार्टी तका उफा फाल कुरुंत होगा वरा गिनें जहालावे मिलावे की कुरी के मशहूर एक्टर दिव्या भारती बॉलीवुड तारफ फिलावे विस्पुने विदाने एना के रीति कमा फारी नेशुंत होगे सबबुं एम्मे के मकबूल कंग एना वनी होदा फा मिलवाके म्यूजिक कंपोजर विजू शाह वणी बैनलाकुआमी सिंथ पॉप के बाय रागुता मिलवे लाफा खासको नवारस्ते काड्डिया हेवन आहरु नेरुनु यूरोप के मशहूर बैंड पेट शॉप बॉयज के हार्ट मिलवाके रागु कोले मिलवाक बेनु को फवे हुलंगे इलेक्ट्रॉनिक्स बीट्स आ हिंदी पॉप एको लुमुन नुदिहा कहरतो के खास आडेंगु फितिगें दिया नवारस्ते का नुदिहा देवन आहरु इंडिया के म्यूजिक चार्ट तो के बना होदा फिल्म के ऑडियो कैसेट विकुमुगा बड़ कामयाबे मिलावाय के सावबुंदी बिगें दिया आमुको मडमातिर क्लासिक आदि लोबी के लवत किया ते साथना सरकम वनी मी लव किया कीना बाय के तावरी फोदाफा सरोज खान कोरियोग्राफ कुरी मी नेशुमुगा आतुगे हरकत तका आवस फेवर तबेनु को फवनी वरफुरी हमया

0: आपने तो कहा था कि
1: ठीक ही तो कहा था। 5-स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने ये चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

0: कई साल पहले की ये बात है।
1: बोलो माँ, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

0: موديها كم ميجا هاتس تي في اف ام.
1: दुवा चे गिनका वो मागो हुरस नुकरे फदो दत्ता तिहरी
2: आ कोको
1: दत्ता आदे मंड मंड मशाक बालागे गन्नचे दत्ता मिहारु मिहुरस कुरे उनींगे
2: ती हाद रंगाल कुंजे के पर बड़ा शुक्रिया
1: मारो हबा
3: दत्ता कोलम नोर में गोंडी गई शींदे आहारें कोलम हो रहा फाना दत्ता ही शींदे
4: हाँ दे अंगड़े खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
3: कुद्दे वे कुड़ा कुड़ा है वो कमकों ऐह मी है केदातोरो अमावे उफावेरी वेदाने